इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। RJ's

का वेलकम है हजरत। भूल के गोले वो बम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय, मैं हूँ आरजे बीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन। दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में।
1: ज़माना कहे फिर क्यों।
0: मैं हूं जॉक सिक्स, ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चनार हर दिल की धड़कन मेरी जान सिटी हट।

0: Jesus.
1: कौन आया?
2: Jesus.

0: और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। जी हाँ व्हाट्सअप शो में मैं हूँ आपका साथी जॉक्सी सर। दोपहर के 12 बजे तक आई एम हियर इन द स्टूडियो। ढेरों बातें बातें जो हम आपसे करेंगे आप हमसे करेंगे। वार्तालाप और गुफ्तगू के अलावा जो ज्ञान का आदान प्रदान होगा वो तो होगा ही। इन शॉर्ट बोलूँ तो इंफरटेनमेंट का डोज लाइक एवरी रोज। जी हाँ दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर अपना है किस्सा सब तक पहुंचाने के लिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा सबको बताने के लिए, हमें ये सुनाने के लिए कि आपका क्या विचार है, विचारों का आचार परोसने के लिए 8899904904 इज द नंबर। 8899904904 नंबर याद करते कॉल है क्यों करे व्हाट्सएप या है क्यों करे टेक्स्ट मैसेज। और फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर।
1: रेडियो चिना रेडियो रेडियो चिना वेदर अपडेट वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, कैसा होगा मौसम, क्या होगा प्रो आलूदा, यह होगा ऑसम, बताएंगे मौसम का हाल बेडला।
1: वेदर अपडेट।
0: मौसम आज बादलों से घिरा होने वाला है। जी हाँ, गरज बरस के साथ साथ हवाएं भी चल सकती हैं।
1: रेडियो चिना रेडियो रेडियो चिना
0: पार्टली क्लाउडी होने के साथ साथ आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब कभी खुशी कभी गम वाला सीन रहेगा आज, कभी धूप कभी टेम्परेचर कम वाला सीन रहेगा आज।
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट।
0: यूवी इंडेक्स स्ट्रांग पर क्या फंबल हो गया, वाह मतलब नजाकत वाला फंबल। यूवी कतई मक्खी फिल्म की शूटिंग हो गई है तो हैप्पी हैप्पी मैं सैड मोमेंट। फिलहाल पते की बात यह है कि यूवी इंडेक्स अभी स्ट्रांग पर है, 7 पर है। ह्यूमिडिटी 70%, विंड स्पीड 6 किलोमीटर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:20 पर, आज का सनसेट होगा 7:41 पर। अपडेट। हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन जॉक्सी के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप से रिएक्ट मेरी चैन

0: सफाई वाला सीमेंट लगाओ। इस दौर में सब कुछ है पैसा, बिकते हैं दिल, सही कीमत लगाओ, सही कीमत लगाओ।
1: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप.

0: व्हाट्स अप पे
1: है। दोस्तों रेडियो चैनल की हर इस फ्रीक्वेंसी पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। वायरल ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप जो गया ऐसा सेगमेंट जहां पर वायरल चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं वर्ल्ड इन लास्ट 24 आवर्स।

उसमें पिशाया हुआ ये रिसर्च। साइंटिस्ट ने जाना है कि जो लोग रात देर तक काम करते हैं या रात को काम करते हैं उनका ब्रेन फंक्शन जो है रेड्यूस हो जाता है। ऐसा कहने वाले लोग कहीं ना कहीं फिर महसूस करते हैं कि आमी पागल हो ही जाओ। देखिए रोज आराम खतरा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट जितना आप बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं उतना आराम देने की भी जरूरत है, नहीं तो बंधु यही गाना गाते फिरोगे। हॉट इज फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार पर वायरल ऑन वॉसम सिस के साथ। हर दिल की धड़कन सिर्फ धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: और दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है एवरी डे हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सिडे धड़काते रहो।

0: bunch of zoos. Kon aaya.
1: Zeus.
2: Radio Channel 90.4 FM up. Enjoy kar rahe hain Mazdar Show. What's up? What's up show ke safar mein main hoon aapka hum safar aur Jesus. Aur what's up show mein aaj ka topic ki garmi ko kaise badhaye. Ji haan, baat ho rahi hai aaj beat the heat ki. देखिए दोस्तों, जब भी हम गर्मी की बात करते हैं तो हर साल साल दर साल जो है गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और इसका वजह अक्सर जो हम कुदरत को बनाते हैं, कुदरत को ठहराते हैं, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें तो इंसान खासा कंट्रीब्यूट करते रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि जंगलों को काटना या नेचर को हानि पहुँचाना इंसान बाज नहीं आते हैं। और वही अगर हम समर की बात करें तो समर कहीं ना कहीं इस सब का बदला जरूर लेता है। मदर अर्थ जो इंसानों ने जोड़ दी है गर्मियों में, और इस साल की अगर हम बात करें तो बताया जाता है इस साल बेतहाशा गर्मी जो है बढ़ने वाली। वैसे बाहर तो असर जो है खासा दिख रहा है इस चीज़ का, लेकिन कश्मीर में अभी तक जो है माहौल कंट्रोल में है। वैसे अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना कॉन्स्टेंटली, और साथ ही साथ लाइट कलर जो है कपड़े पहनना या लूज फिटिंग कॉटन क्लोथिंग पहनना, या अपने घर को कूल रखना और कर्टन्स वगैरह का इस्तेमाल रखना करना पीक आवर्स के दौरान ज़रूरी है। इससे आप गर्मी से खुद को दूर रख पाएंगे। रेडिशन 90.4 FM हमारे साथ साइमा जुड़ी हैं। देखते हैं सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फ्राइडेज और ट्यूजडेज को सिर्फ आई फील गुड हो। देखिए, आई फील गुड एक सेगमेंट है, एक शो से बनाना 3 घंटे तक आई फील गुड, गुड तो लोग फील करेंगे लेकिन सब लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तो रेडियो चैनल का जो भी शो है वो इस तरह से वेब किया जाता है कि सब एंजॉय कर पाए। अब सिर्फ अंग्रेजी गाने सबकी पसंद नहीं हो सकते, सो सुझाव अच्छा था लेकिन इसे रियलिटी में साइमा हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉस के साथ मजेदार शो वो सब आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। शो का हिस्सा बनने के लिए 9999 0409 04 इज द नंबर। सो मेरी जान से टेक धड़काते रहो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दोस्तों हर इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो वासबालनी रेडियो चैनल 90.4 एफएम। मैं हूं आपके साथ जगजीत। वासब शो में अगली पेशकश आई फील गुड, इट्स अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। जरा सा इंतजार दे रहे हैं प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार।

0: जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
3: Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs.
4: Tech Talks with RJ Zeus.
5: RJ Zeus.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
3: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चिनार बीट्स आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम। आज जुमतुल मुबारक है और आज इस खास मौके पर हम आपके लिए बराबर 12:30 से लेकर 2 बजे तक डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं, ट्राई करते हैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नशीद नातिया कलाम सूफ़ी कलाम पहुँचाए, ताकि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाए आपको याद रहे कि हम आपका हमेशा साथ निभाते हैं और आप हमारे साथ ही है और आपके बगैर ये साथ अधूरा होता है। और इस खास मौके पर हम ट्राई भी करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में नमाज में वक्त बिताए और हम सब के लिए दुआ करें, और जब भी आप मस्जिद की ओर रुख करें जा नमाज में हाथ उठाए बस पूरी कौम के लिए दुआ मांगे कि यूं ही हम एक दूसरे के काम आते रहे और हम एक दूसरे के साथ ही बने रहे। फिलहाल के लिए साथ तो हमारा बराबर 2 बजे तक का है और बातें होंगी, क्या टॉपिक रहेगा वो भी बताऊँगी। फिलहाल के लिए ये नातिया कलाम आप सुनिए ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है दिल की धड़कन।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमदे बारी ताला नाते रसूल।

हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जब इतनी बार बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। 8899904904 नंबर है इस फ्रीक्वेंसी का जुड़ने का, पर मैं तो आपसे जुड़ गई हूँ बराबर चार तक। और शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, क्या बजिंग है, और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। शो शुरू हो चुका है और आधे आधे कुछ ना कुछ क्रेजी प्ले होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए एनर्जीज हाई होनी चाहिए, वो भी आफ्टरनून में। खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है ना भाई, क्या ही बोलें।

0: देखिए हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो वेट कर रही होती हूँ कि भाई कब मैं आप लोगों से बात करूं और आपको इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और आप लोगों से बातें करूं और आप भी अपने विचार हमसे शेयर करें। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और कुछ ही ट्रैक से बात करेंगे कि आज की क्या ट्रेंडिंग कहानी है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार।
1: है

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM। और अभी वक्त है कि हम बात करें कि क्या है ट्रेंडिंग, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, कौन सी रील कौन सी मीम लोग रीपोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब एक्स या फेसबुक या हो इंस्टाग्राम। और आज एक ऐसा गाना है जो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है और अपने टाइम का हिट, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, फ्रॉम द मूवी तमंचे। एंड ऑनेस्टली ये अभी

एंड दिस इज एक्चुअली अ रिमिक्स जो तमंचे में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये बप्पी लहरी जी की आवाज है. एंड द बप्पी लहरी का प्यार और बार, और सोना जी बहुत ही खूब सोना, बिल्कुल सोना है बच्चा. बप्पी लहरी से हमेशा हमें गोल्ड की याद आती है बट उनके वोकल्स, उनके लिरिक्स, उनके गाने का तरीका बहुत ही डिस्टिंक्ट और बहुत ही खूबसूरत है.

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: हाय, मैं हूँ आशा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.
1: पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा.
0: देखिए, जो चाहे वो मिले, वो तो हम तक नहीं है, बल्कि वो तो हमारे नसीब और ऊपर वाले तक है. पर रेलवे अपडेट तो मुझ तक है, वो अपना काम करना ज़रूरी है. देखिए, रेलवे अपडेट आज की यही है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे, क्योंकि टुडे देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एंड दे आर चेकिंग द ट्रेन्स. चेकिंग का है आज मौका, सो आप ना छूटे या छूटे, लाइक आपकी छूटे ना ट्रेन, सो इट्स बेटर कि आप कोई भी हड़बड़ी नहीं कीजिए. और ज़रूरी है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे. एंड मोर ओवर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ट्रेन्स, चाहे वो ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस हो, लाइव लोकेशन हो, रेल वन ऑफिशियल ऐप से कंफर्म करें, उसके बाद ही बुक योर टिकट्स. एंड मोर ओवर, यू कैन बुक योर ऑनलाइन टिकट्स ऑल्सो. आप इन पर्सन जाके स्टेशन पर भी

0: अरे भलता ही पकड़ा बाप, लाइन में आ, लाइन में आ।
1: ठुटा ठुटा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइन में चल।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ए कुत्ते, इडियट।
1: हाय, मैं हूँ असरा, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है दिल की धड़कन। अब देखिए, वक्त की बात है कि वक्त वक्त पे हमें ये याद आता है कि ये वक्त है कि हम टॉपिक के बारे में बात करें, और वक्त वक्त इतना हो रहा है कि क्या बताऊं। मगर अभी हम वक्त के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम। इज टाइम रियल या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? अब देखिए, ये ऐसी चीज है कि साइंटिफिक फैक्ट्स को लेकर लोगों का क्या कहना है, और वक्त की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, व्हाट इज़ दिट स्पेशलिटी कि हमारे लिए ये जो वक्त है इसे आप किस कहने को इस रच करे थे, इस वक्त को सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और एवरीथिंग अबाउट टाइम। और अभी वक्त है कि मैं आपको इस ट्रैक के साथ अकेला छोड़ दूँ। ऐसा लग रहा होगा कि मेरी मत मारी गई है, बट ये सच है। रेडियो सुनार पे आर्ट फ्री म्यूजिक का वादा बैक टू बैक सबसे ज्यादा होता है। मैं हूँ अस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन। चाहूं

பண்ணுங்க.

आरजे बीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

Hi, मैं वंसरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM एंड दिस इज द रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 98.4 FM 8899-94-94 इज द नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स व्हाट्सएप और बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. मैं वंसरा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

शर्त तो नहीं, पर हमारा वादा हुआ था कि आज जाऊंगी कल वापस आऊंगी। 4 बज चुके हैं और आपके और मेरा साथ खत्म होता है। और सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। कल सैटरडे है और कल वापस आऊंगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी है, पर कल बराबर 2 बजे वापस आएंगे। और कल है एक स्पेशल शो जिसका नाम है रेडियो गर्ल्स। बिल्कुल मेरे जैसा कौन नहीं मिलेगा आपको, पर देखिए मैं ही मिलूंगी कल बराबर 2 से 4। अभी के लिए बस इतना ही, और अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ पे कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। मैं हूँ अस्ट्रा, शो था हंगामा, साइनिंग ऑफ, पुट अवे।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: Chinar Beats with RJ Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Steady Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 एफएम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
6: मैं हूँ

0: और जेसुस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: तभी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

money.

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

बता दूं? वो यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारी ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ, ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: भाई बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी
1: शाम। बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।